0: महाठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिया कर डोले, द रोप हैव इन हैंड टू हैंग यू अप, बट टिल दैट सी हैव वेरी स्वीट लैंग्वेज, वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, हाउ टू कैच यू, एंड देन यू आर होल्डिंग लाइक दिस स्नेक इन योर हैंड्स। सो दिस माया, दिस संसारास, देयरफॉर इट इज सेड पतन और उत्थन, दो बोथ हैज बीन सॉन्ड। सो भगवान विष्णु सेड, लक्ष्मी देवी गॉडेस, लेट्स गो बैक टू अवर वैकुंठा, दैट इज मच बेटर, सम टाइम टू टाइम नो नारदा कम्स, दैट्स ऑल। एंड सो केम देयर एंड दे वेंट, सो बट बोथ वन सीड, सो द रूट्स आर इन वन, बट वॉट इज प्राउड केम आउट, वन इज दिस एंड दैट। सो वॉट इज दैट वन? वन इज कॉल्ड संघ, संघ मीन्स द कंपनी, कंपनी। नाउ विच काइंड ऑफ कंपनी यू हैव, नेगेटिव वे और स्पिरिचुअल पॉजिटिव वे? नाउ दिस इज कॉल्ड ओनली वन वर्ड, संघ। Now in the one word, one letter, sang. Now before sang, if you write sat, what becomes? Sat sang. And if instead of the sat you write ku, what happens? Ku sangha, bad societies. So root is there, but how now the branches will develop, this side or that side? So in the Kali Yuga is a very, very hard, difficult to get good Sangha. There is a lot of sweet words, there are a lot of tricks, but at end there will be nothing. So this one bhajan was Mahaprabhuji's, then I will not translate all, otherwise morning I have to serve you breakfast here.
1: And you miss your plane.
0: So therefore, sir.

सत्संग ओ सजन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। दिस मेनी डेफिनेशंस आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंठ स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंठ

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

0: या विजय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 times residing the Om.
0: 11-szer Om lesz.
1: There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज, द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स, सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल वेयर द students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं, और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें, बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन the time the school begins from 1st of July. So now our students are coming, but dear ones, you can see many of our Gyan Putra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar
dress, pitambar, like gold. And Bhagavan Krishna used to have pitambar. And you see, pitambar is a color of the flame of the fire. So, the vidyarthi, they are studying. They should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, hame to gyanarjan karna hai, paise ki baat nahi karni hai, hum padhenge, paise kamayenge. Ye bhav nahi hona chahiye vidyarthiyon ke andar, kyunki wo paise jo hai, जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा बड़ा होकर के मेरे माता पिता मेरी समाज और मेरा गांव मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो ले वो एक मिनारा 15 लाख अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं 15 लाख रुपया उठा सकते हैं हम अरे बहुत तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है 15 करोड़ अब इतना बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहाँ हो जाएगा जमा और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो

0: goes from the Bharat. All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indus Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia also were the South Indians, which we call the Aborigines. तो अब्रिजन्स के अंदर वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है साउथ इंडिया का है तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ स्वयंभू शिव आगे वापस वहीं के नहीं इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं सब कुछ है अपने देश के अंदर में और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है चंदन है मेरे देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है हैं? हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है फिर क्या काम है वहां तो आराम है वहां आराम नहीं है सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर Jnanputra is here, they are coming, and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now, I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Jnaneshwar Puri Ji Maharaj. ज्ञानेश्वर पूरे ज्ञानेश नाम ज्ञान और ईश्वर दो मिल जाए तो क्या चाहिए और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों है तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया समझिए तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी And in Sanskrit, and in Croatian, four languages at once speaks. Wohi Maa Mandaleshwar ban sakta hai, beta. Four languages, Hindi, Sanskrit, English, Croatian, and maybe someone more. So, hamare Jnanputra ko, he will introduce our Jnanputras and our हमारा ब्रह्मचारी ऑफ दिस आश्रम सो ज्ञानेश्वर जी आप बच्चों को गिव द चिल्ड्रन दैट काइंड ऑफ सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट दे गेट इंस्पिरेशन टू स्टडी प्रॉपरली बैठो सदीप नारायण भगवान की
1: जय देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट स्मर कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामलेश्वर परम समेश्वर जी सत्य गुरु देव की जय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति ही शांति ही शांति ही एज यू ऑल नो आवर श्री विश्वदीप गुरुकुल इज अ स्कूल फॉर विच फॉर द लास्ट लेट्स से 20 इयर्स इज एजुकेटिंग द चिल्ड्रन सम ऑफ देम यू कैन सी हियर it was a Swamiji's project, which our dear Vishwa Guruji started long back, because education in a country which is

Good. Thank you. Thank you, and me honyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the our Gurukul ke bachche jo hai, turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. All the Vidyarthi turn to the... Don't go close to the... Chela nahi dikhega, beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas, beta, yahi khade hoke de. Ya, nazdik aa ja, bas. Okay, we will see if when is... देवेश्वर महादेव की जय अलकपुरी जी महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओ

ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ही खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली already in the school when we have the prayers and all the students there. Now is the time for prasad. Dikh rahe hain sabhi ki nahi dikh rahe? Yes, time for prasad. Theek hai, to yahan apne yahan har mahine mein ek do baar aur main aaunga tab tumhare ko pure sansar ki yatra kara denge swami ji television ke zariye.

0: शांतिः शांतिः शांतिः।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख

सत्संग ओ सज्जन वाली लागे ओ सदाई सत्संग। ओ माय डियर वन, ओ माय फ्रेंड्स, आई लव सत्संग। श्रुति और स्मृति गावे, श्रुति व्हाट इज स्पोकन, स्मृति व्हाट इज इन मेमोरी। दिस इज फ्रॉम वेदास, श्रुति स्मृति, श्रोता श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय। दिस मेनी डेफिनेशन आई विल टेल यू आफ्टर। सुख बैंकुंठ स्वर्ग नहीं दुर्लभ, दुर्लभ है सत्संग। सुख बैंकुंठ

श्री अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय।

0: श्री नारायण
1: भगवान की
2: जय।
0: माता जी की
2: जय।
1: देवपुरी भगवान की
2: जय।
1: हरिओम।

ॐ श्री दीपनारायण भगवान की देव महादेव की हिंदू धर्म समर श्री स्वामी माधवन जी सदगुरुदेव की ईश्वर गुरु मंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: श्रीदीप नाम भगवान की जय। श्रीमदानंद जी भगवान की जय।
1: थैंक यू एंड टुमारो विल बी मोर ओके।
2: जितना सीधा उदासी
1: प्लीज कम।
3: There's a very powerful prayer which we hardly ever sing.
2: Je jedna velice silná modlitba, kterou málo kdy zpíváme.
3: Shri Satguru Bhagavan ki arati. Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.

अम्बल शिदीप नारायण भगवान की जय। श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।